ताड़े रे जासे रंग तरंग करीब मस्त रंग तरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावे से कुसाई खां सबे उठ जासी।

0: बनाई रच पर रत नहीं दिलदा तैसे ही सुमाया के उजो कहा दवा
1: अनु समझ दिखया ना हन अजू समझ

निषाद बदल गया ना, माल कौश का निषाद नीवा, चंद्र कौश का निषाद उपरला, इस चंद्र कौश और सूरज कौश।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब तीनों सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रे आ राग जोग

ताल दो ताल तीन ताल चार ताल और चार ही राग माल कौश चंद्र कौश सूर्य कौश जोग कौश चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात पर आई जब ते सात संगत में पाई ना को बैरी ना ही बिगाना सगल संग हमको बने आई जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब में रव रहा प्रभु कह देख देख नानक इकसाई आप जी ने श्रवण किया है तराना साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इत्थे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा ऐसा साडे सामने ना कहा कहिंदे अस्सां ही वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ इह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी इह सानूं लिखा दिओ तराना असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी ही नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही श्रवण करो उन्होंने को ही दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज तो तराना श्रवण करना साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलों प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने कभी आप दर्शन करना।

चार पंक्तियां हैं। धागर दी धर्म दृष्टान धागर दी देम दिरना धागर दी धर्म दृष्टान धागर दी देम दिरना धागर दी ब्रिक्ते

जागृति दे दे तान जागृति कौशल्य जागृति दे दे तान जागृति कौशल्य चल धने धने बोलाने तारु कौशल्य चल धने धने बोलाने तारु कौशल्य जागृति धर्म दृष्टान जागृति देव करना जागृति धर्म दृष्टान जागृति बाजुनि वृत्त बाजुनि जागृति तान तुम करना जागृति वृत्त बाजुनि तान तुम करना जागृति धने धने बोलाने तारु कौशल्य जागृति दे दे तान जागृति कौशल्य जागृति दे दे तान जागृति कौशल्य Bigger than that, I could be bumped on team, I could be bigger than that, I could be bumped on team.

0: ಬೇಗ ಬೇರೆ ಕಾಗದೇ ತಾಂಬೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇರೆ ಕಾಗದೇ ತಾಂಬೋಗಿ
1: नक्षत्र वीणा का स्वर है दीन तिरना जो है यह सितार का स्वर है तिरना तिरना सितार वजदा और दीन जड़ा है नक्षत्र वीणा वजदा यह साजा के दर्शन कराए ने।

तो मेरा भाव कहता है कि जेडे प्रचलित शब्द ने वो तो आप पढ़ लेने ते जेडे औखे शब्द ने वो भी राजी सिंह पढ़ने चाहिए ने। हां जी, तो राजी सिंह इधर भी ध्यान देना चाहिए, संगतां नूं सरवण करना चाहिए, राजी सिंह गायन करना चाहिए। आनंद साहब जेड़ा है वह मर्यादा किवें पढ़न दी, जोटियां दी धारना पढ़ लैने ना, यह मर्यादा नहीं। मर्यादा है राग रामकली दे विच और तीन घर दे विच पढ़ना, घर तीजा रामकली, तो उसका स्वरूप सरवण करो जिवें साहिब आप आनंद साहब पढ़ते हुंदे सी रामकली राग।

साहिब गुरु रामदास साहिब जी भी बचन करते हैं, आख देन ऐ मेरे मन कुछ समझ, जितने तू रिश्तेदार वेख रहे अपने मतलब देखन, जदों तेरे विच खून नहीं रहना, तेरे विच कोई उन्हां दा मतलब नहीं रहेगा, उस दिन तेरे नेड़े भी किसे ने टुकना नहीं। इसलिए प्यारिया जप सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु रामदास साहिब जी आखदे ए जो संसारे के कुटुंब मित्र भाई दी से मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा, जित दिन उनका स्वाओ होए ना आवे।

माता कहंदी है मेरा कमान वाला पुत्र चला गया। स्त्री वाल पुट रही है पर गल बन नहीं रही। कबीर जी आख देन कितना ही पै रोन पर वो कम नहीं आउंदे, विचारा मनुख कल्ला ही जा रहे। भगत आख देन देहुरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई, लट छिटकाए तिरिया रोवे।

मस्तं भगनंत शैलं मस्तं भगनंत शैलं कर्दमंत्रंत पपीलक साग्रं लघंत पिंगं साग्रं लघंत पिंगं तं प्रकाश अंधक है साध संगेण शिवरंत गोविंद साध संगेण शिवरंत।

पातशाही दसवीं त्रिभंगी छंद श्री अकाल जी की उस्तक त्रिभंगी छंद खग खंड देहंड खग खंड खग खंड देहंड खग खंड अतराणा मंड।

नमो श्री भगवती बढ़ली सरोही। ये शस्त्रां दी पूजा है। जिस वेले जोधे रण विच जूझ देने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने ओ शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, नमो श्री भगौती बडैली सरोही, नमो श्री भगौती।

ते द्वय करे एक ते द्वय सुभता हाथ सोही सुभता हाथ सोही नमो लोहे की पत्र का झलहे लहंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो जीव ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोख दाती अपंगी फिरे शाम है मोख दाती।

अस्कृपान खंडो खड़ग, अस्कृपान खंडो खड़ग तुक्त तवर अर्थे, अस्कृपान खंडो खड़ग तुम्बक तवर अर्पे, सैप सरोही सैही यही हमारे पीर, सैप सरोही सैही यही हमारे पीर, तीर तू ही तू ही तवर तलवार, तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार, नाम तुहारो जो जपे, नाम

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे आ कहिंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़दन तीरंग।

भाई नंदलाल जी, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त, हमेशा जिंदा अस्त, ताल बे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

चार ताल दे अंदर ए रीतबद्ध है, इसनु ध्रुपद ताल भी कहिंदे ने, चार ताल भी कहिंदे, ध्रुपद ताल भी कहिंदे। श्रवण करना

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच, इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने, और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसीं सरवण कीता हुण, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे,
1: सेव करो करना निज की, जैसे विचार पदार्थ पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे, कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूंट विच होएगी, चढ़दे तो लेंदे तक खालसे की फतेह होएगी, और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे,
1: लंक लूट लिया, लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार छूट के अंदर
1: रूम नाबत बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंद लाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंद लाल दे नाल गुरु साहब के बचन हो रहे भाई नंद लाल साहब सुनो नंद लाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
0: एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण कराऊं वाहिगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को

0: देख खालसे को तुर्क जाएंगे बाहर, देख खालसे को तुर्क जाएंगे
1: बाहर। एक लड़ा करे सिंह
0: किस मुकरा झूलन नेगे हस्ती साजे, झूलन नेगे हस्ती साजे, द्वार द्वार पर नौबत बाजे। सवा लाख जब धुके पलीता, सवा लाख जब धुके पलीता, तबे खालसा उदे।

कोड़ी अब भी करना जुगला पे ही तेधारी है। देखे किताब अपना दरक चिपकी सारी है, जो आया सो चलसी, सब कोई आई मारी है, जिसके री प्राण है।

ओरिजिनल कंट ने अपनी हरता के पारावार आप कराए साकी फिर आप कराए मार इक ना गलिंग नीरिया इक भी चढ़े दिस्यार।

सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। सतगुरु की रीसे होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कुड़िया।

एकदम थोड़ा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहिगुरु, एक थॉट आएगा वाहिगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहिगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते जे असी हर रोज करते जिस

अंगद अनंत मूर्त निज धारे अगम ज्ञान रस रस ओहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो।

खालसा मेरो धर्म अर कर्म खालसा मेरो पेद निज मर्म खालसा मेरो सतगुर पूर

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा वर्णत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाकी। मैं झूठ नहीं कह रहा एक जरा पर भी, एक छिन पर भी इहदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौं खा के कहना। या मैं रंच न मिथ्या पाकी पार

किन्हीं किया परवृत पसारा, किन्हीं किया पूजा विस्थारा, किवन किन्हीं निवल भुयंगम साधे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा, किन्हीं ग्रह तजवन खंड पाया, किन्हीं मोन अवधूत सदाया। कोई कह तो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती।

करना जो गुलाब में हिदायत हारी है, देखे गीता अपना सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है, जिसके जीवना है जो सारी है, अपना नहीं कारी है, अपनी कारी।

साहेब की सेव करे आपे बख्शे ते दिसते ऊपर नाई कौन डरे डर किसका आए न जाए ना दुख पाए ना मेरा ते

छत्री को पूत हूं। चढ़दी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी। छत्री को पूत हूं ब्राह्मण को ना है, छत्री को पूत हूं ब्राह्मण को ना है, तैसा पे आवत हूं जो करो और जंजार जितो ग्रह को तो त्याग कहा जितता मैं धरो, और जंजार जितो ग्रह को तो त्याग कहा चितता मैं धरो, अब रीझ के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो, जब आपकी आग निदान

खिलौना। अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना। मेरा तो नाम गोबिंद सिंह।

आन को दान न लागत नी को, आन को दान न लागत नी को, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और

महीं के प्रसाद ए महीं के प्रसाद जो सुधार करे आज आग टे इन्हीं के प्रसाद

जे जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे। साहब फरमाते जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। आप मुक्त मुक्त करे संसार। आप मुक्त मुक्त करे संसार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नानक तिस जन को सदा नमस्कार। नित जपिए